0: बोल सकते हैं, क्यों नहीं रुआ।
1: Go ahead.
0: Hello, Rare, no phone. Tennessee Victor, Victor Queen, 9245. Be on a black explorer.
1: I copy.